पल दसरदा पुर होए दयाल नकाब हूं चूरी है खुना जानी है सतगुरु होए दयाल तहार रंग माणी है अकाल पुरख दे दिते हुए सारे रंगों नु मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत ते सुहानी शाम दे विच खूबसूरत ते सुहाना रेडियो प्रोग्राम रेडियो नाल लेके मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधु और मेरा हमेशा तरह साथ दे रहे ने आर जी गैवी उर्फ गुमनाम सुन वाले सारे दोस्तों नू मित्रां नू भैणां नू भरावां नू साडे बुज़ुर्गां चाहवां नू फुल्लां वर्गे चेहरियां ते रब वर्गियां मावां नू बहुत बहुत प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार।

0: जी तो दुसान
1: बड़ी पाजी,
0: आप क्या लेने आए हो?
1: शुद्ध देसी घी।
0: लो पाजी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
1: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
0: नानक घी पाजी,
1: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड, सो प्योर, इट्स नानक।

0: करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरां दे इंस्टाग्राम पेज ते। कस्टमर बनना चाहते हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिल्लों वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिल्लों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाण वास्ते बेस्ट गिफ्ट जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नितनेम दीयां सारीयां बाणियां ने ढाडी वारां ने 300 शब्द ने 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिल्लों वीडियो दा गुरबाणी रेडियो IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिल्लों वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर 7 दिन खुले ने 11 to 8 905-204-1313 905-204-1313। जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो अज ही सानू कॉल करो 6475041557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही S&S लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4376551984 4376551984

0: दसो यार, आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है। ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे हैं, कई बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं। पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो अनु डेट नो प्रॉपर्ली असेस करन, मैनेज करन, ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल विच ले आ सकते हो, ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन लिए आज ही कॉल करो 416-518-3200
1: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दी, घरे नहीं आना अज?
2: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा है।
1: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नु 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
2: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलते ने, जिन्हां दा कहंदे एक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो। सेविंग 100 डॉलर दी 905-458-1300।
3: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्ड नालों किते घट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
4: आज ही होम एक्विटी वीजा लेने दे लई कॉल करो 905-671-2000 905-671-2000। कुछ शर्तें लागू होंगी।
5: भैन जी, तीजा ब्याह है कैनेडा दे विच, ना ही इंडिया वर्गा टेस्ट, ना ही इंडिया वर्गी क्वांटिटी। छोटियां छोटियां प्लेटां फड़ा देंदे ने, जदों दूजी बारी खाना लैन जाओ ते बफे खत्म हो जांदा है।
6: मैनू पता है क्यों, मैंने तवा किचन दी केटरिंग खादी सी। सच्ची कहो तो फूड इन्ना टेस्टी, अनलिमिटेड फूड, इन्ना फूड के मैं खांदे खांदे थक गई पर फूड नहीं मुक्या।
7: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटेन एश एंड बवेडा इंटरसेक्शन, या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699।
2: और बलविंदर, राजविंदर ने मिला, राजविंदर की है तोड़े सामना? राजविंदर, हेलो।
8: हेलो जी।
2: हाँ जी, सत्रीकाल जी।
8: सत्रीकाल जी, गंडे
2: गंडे।
8: हाँ जी,
2: संतोष जी, आवाज नहीं आ रही थी मेरे। सही की क्या उन्होंने?
9: समझ नहीं आई अमन जी, उन्होंने
2: मैनू गंडे लगे, गंडे कहते, गंडे ले आने खा नहीं सकते अपा। I don't know. So, तुसी मैं ता, मेरे ता दिमाग च आ गया आंसर तुहाडा, कि तुसी कुछ लेके आने हो खाण नू।
9: तुसी
2: उन्हू खा नहीं सकते, पर तुसी ले आने हो।
9: हाँ जी, हाँ जी, लेके
2: ले सारे आंदे ने।
9: जी जी, लेके सारे आंदे
2: हैं। मेरे कोल ता आंसर आ गया संतोष जी, मैं बोलता थोड़े ताई तुहानू, मैं कहते अपना अगला क्वेश्चन रेडी कर लो नाल, पर बाकी नू ही पता होगा। संतोष जी, हजी केड़ी चीज है जेड़ी तुसी थोड़े घर च किसी दे भी कोई फंक्शन आ गया है, उस फंक्शन नू तुसी अगर अटेंड करना है, सॉरी उन्हूं डिजाइन करना है, माफी चाहूंगा, तुसी ना एक इन्हां दा फोटो बूथ सिस्टम है, ये थोनू एक तां जिन्ने भी लोग ने उन्होंने फोटो खिंच के एक एक ना चेन की होता, संतोष तुसी बोलो मर जा।
9: जी बिल्कुल, उन्होंने दिया पिक्चर्स मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट दे विच पा के देंगे, या तुसी की चेन्स दे विच भी पवा सकते हो, इमीडिएटली तानू ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करेंगे।
2: सो तुसी फोटो खिचा सकते हो, फैमिली दा एक बूथ बने हुंदा वड्डा यादगार लई, एक तुसी रिव्यू मंगो छड़ना हुंदा, जिवें तुसी ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਿਊ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ 1000 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਜੀਵੇ 1000 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਤੋਸ਼, ਤੇ ਰੁੜ ਰੁੜ ਕੇ ਘਸ ਘਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ। ਹੈਂ, ਸੋ 100 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 1000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੈਸਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੀਲਾ ਜਾਂ ਭਾਲੂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਗੈਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਕਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 360 ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ 347-988-2315 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 437-988-2315 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 437-988-2315।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ब्रैम्पटन वासियों, हुण बदलाव दा समां है, हुण तुहाडी आवाज सिटी हाल तक पहुंची। सुरक्षा पहली तरजीह, वध रहे प्रॉपर्टी टैक्सा ने परिवारां ते बहुत वड्डा बोझ पाया है। मैं टैक्सा विच राहत लई पूरी पूरी कोशिश करांगा, हद तो वध वधी हुई माइनर वेरियंस फी नूं घटाउण लई आवाज बुलंद करांगा अते लोकां दे पैसे दी जिम्मेवार वरतों मेरी पहली तरजीह होगी। सिटी हाल विच पारदर्शिता अते जवाबदेही ये मेरिया मुख तरजीहां हन। वड्डा भरोसा मेरी जिम्मेवारी, तुहाडी आवाज मेरी ताकत। प्रेमपाल गिल, रीजनल कौंसलर उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2 अते 6 ब्रैम्पटन। धन्यवाद।
3: जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 साल लई तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहते हो ता $99 ले सकते हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मैनू कॉल कर सकते हो 647-765-2340 647-765-2340।
4: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तुआ कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वे कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर ओए ओहदे तो वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
6: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 905-456-9900
7: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है वोट फॉर चेंज वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी काउंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल
9: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
9: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
11: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
8: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
12: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ Cellular Point, more phones, more plans, more choice.
13: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं लक्की भाजी दी बनियां किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरियां किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 दे कॉल कर सकदे हो

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमाल लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: आज
6: पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
7: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
8: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
9: दोस्तों, मैंने फिंगर बढ़ा ली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे अपने शहर थोड़ी डिमांड
10: बदनाम करती नाले मैं ते क्यों दी मिठी चोरी
9: ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार दूसरी शो मिस ना करो। सो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर 8 शाम 7 बजे।

0: करो कि तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो।

0: अगर फर्स्ट ईयर फंडिंग आएगी तो तुहानू सेकंड ईयर भी सेम टू सेम फंडिंग आएगी एंड 2 साल इंटरेस्ट फ्री रहेगा तुहाडे कोल लोन पिया होया। जदों स्टडी फिनिश होएगी उस तो बाद ही 2.5% इंटरेस्ट लगना शुरू होएगा, 2 साल कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा। सो तुसी साडा नंबर नोट करो, नंबर साडा हैगा 4372643175।
1: जी सिमरन जी थोड़ा जिहा भी दस दो कि कोर्सेस केड़े केड़े ने जिहड़े ऑफर कीते जांदे ने ते सारिआं दे ऑनलाइन क्लासेस ही लगदीआं ने।
0: हाँ जी, कोर्सेज साडे कोल 2 साल जिहड़ा मैं मेंशन कर रही सीगी ओह बिजनेस मैनेजमेंट दा कोर्स हैगा, 1 ईयर दे होस्पिटैलिटी दा हैगा, अकाउंटिंग दा हैगा, लॉजिस्टिक दा हैगा, PSW दा कोर्स भी हैगा 6 मंथ दा, ECA दा हैगा अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट दा 9 मंथ दा कोर्स अगर तुसीं करना चाहुंदे हो, एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज होणगे सारे। ते क्लासेज जिवें मैं मेंशन कीता सेल्फ स्टडी बेस्ड होणगीआं, बट जिहड़े कोर्स जिवें मैं PSW और ECA दा कीता ओह थोड़ा इन परसन होएगा, ओहदे विच इंटर्नशिप हुंदीआं ने। सो बाकी जिहड़े कोर्स 1 ईयर 2 ईयर दे हैगे ओह सारे सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्स ही होणगे। सो तुसीं सानूं सिर्फ अपनी इनकम दसनी है और अपना फैमिली साइज दसना है, असीं उसदे बेसिस उत्ते फिर तुहानूं दस देवांगे कि तुहाडी तुहानूं किन्ना लोन अप्रूव होएगा। सो नंबर नोट कर लो 4372643175।
1: जी सिमरन जी लास्ट विच जांदे ने दस्सो कि तुहाडी फीस किन्नी है इस लई।
0: ओके, इहदे विच साडी फीस जिहड़ी हैगी 200 होएगी एंड ओह तुसीं उदों ही देनी है जदों तुहाडा अप्रूवल आ जाएगा, साडी फंडिंग आ जाएगी तुहाडे अकाउंट दे विच। फर्स्ट पेमेंट 60% आउंदी हुंदी है, सो 60% पेमेंट जदों तुहाडे अकाउंट दे विच आ जाएगी उदों साडी फीस $200 आपां चार्ज करांगे, और कोई होर हिडन चार्जेस नहीं होणगे। जदों तुसीं साडे ऑफिस आओगे आपां तुहानूं कॉलेज दी फीस राइट अवे दस देवांगे वी किन्नी फीस है तुहाडे कॉलेज दी, सारा तुहानूं एक्सप्लेनेशन प्रोपर गाइड कीता जाएगा एंड तुहानूं कॉलेज दा वी पोर्टल सारा तुहानूं एक्सप्लेन कर देवांगे वी क्लासेस तुसीं किवें ऑन करना है, हर चीज तुसीं वीडियोस किवें ऑन करनी है, असाइनमेंट्स किवें उच्च सबमिट करनी है एंड बाकी क्लाइंट्स दी फाइल्स साडे कोल बहुत सारी 100+ फाइल्स पईआं होईआं जिन्हां दे फंड ऑलरेडी अकाउंट दे विच डिपॉजिट हो चुके ने। सो साडी फीस सिर्फ 200 ही रहेगी और आपां ओह वी उदों ही लवांगे जदों तुहाडे फंड साडे अकाउंट दे विच आ जाणगे, उस तों इलावा कोई होर हिडन चार्जेस नहीं होणगे, कोई कमीशन बेस नहीं होएगा। सो नंबर साडा नोट कर लो, नंबर साडा हैगा 4372643175 4372643175 4372643175।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, ते जरूर तुसी इन्हां दे ऑफिस भी पहुंच सकते हो, ते नंबर है 4372643175, ऑफिस हैगा इन्हां दा लोकेटेड 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड स्वीट नंबर 212 मिसिसागा दे विच, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक तों सारांश नागपाल जी ते उन्हां दी टीम दे नाल तुसी जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जी
2: दोस्तों आल्टमा सेल लगी हुई है जी अपने लागी इंडियन फ्रूट लैंड सारे ब्रांच से, अज तो शुरू हो गया है फायदा उठाओ यदा, ग्रोसरी जिन्ने भी आप लिया रख सकते होंगे थोड़ी जी कोल्ड रूम च रख लिया करो, राइस वगैरह होंगे जोड़े है ना फिर कम आते रहेंगे दाला दूला जो सस्तियाँ होंगे उदो ले आया वो तुम सबरे सियाने ही हो सारे आप ही। मैं थोड़ियाँ प्राइस देवे हल्दीराम स्नैक्स जिन्ने भी है उन्होंने 99 सेंट लगाए ने, दीप तंदूरी गार्लिक ना हो गए ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੈਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲੇ 5 ਪੀਸ ਦਾ ਪੈਕ ਮਿਲੂਗਾ $5 ਦਾ। ਦੀਪ ਕੱਟ ਓਕਰਾ ਭਿੰਡੀਆਂ 2.49 ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਸੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਆਓ ਗਣੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਹੋਜੂ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੂਸਸ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2.99 ਦਾ 3 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਬਟੈਨੀਆ ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 2.99 ਦੇ
1: ਜੀ,
2: ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਟੈਨੀਆ ਸੂਜੀ ਲਗਾਈ ਆ 99 ਸੈਂਟ ਦੀ, ਬਠਿਆਨੀਆ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ 4.99 1 ਕਿਲੋ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸੂਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ,
2: ਰਸ ਮਲਾਈ ਲਗਾਈ ਆ 7.99 ਦੀ, 3 ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਸੀ ਬੇਸਣ 3.99 ਦਾ, ਸਵਰਨਾ ਮੈਦਾ $1.99 4 ਪੌਣੇ ਸਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ, ਦੀਪ ਕਸੂਰੀ ਮੈਂਗੋ ਪਲਪ 2.99 ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 4-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਕੇ
1: ਜੀ।
2: ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: हेलो एएम 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
2: टुडे विच लाइव गलबात करने लिए हुणे कॉल करो 905-564-6444
1: 905-564-6444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 530

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: कोई भी जानकारी लेने के लिए कॉल करो 647-504-1557 647-504-1557। पंजाबी लहरां या चलो AM 530 नूं 24 घंटे 7 दिन अपने फोन ते डायल करके सुनन दे लई डायल करो 416-477-2040 416-477-2040।

0: यार मैं प्रोग्राम दे शुरुआत तरीफां दी नहीं सी गल आपां कर रहे वी बंदे नूं आउंदियां तरीफां करनियां जदों जॉर्डन ने कह ही दिता कि तेरियां तरीफां वी तां कम गोरीए तां इस तों वड्डी मिसाल की उस सदी भी बंदे तरीफां बहुत करदे आ। ओके असीं वी इक तरीफ करनी आ, असीं तरीफ करदे आ हरमन बत्ता होरां दी। जे तुसीं मॉर्गेज करवाउणी है, जे तुसीं फाइनैंसिंग करवाउणी है, तुसीं वाकई चाहुंदे हो कि यार नवी कोई नंबर दो प्लीज़, सानूं कोई स्ट्रेस ना होवे, साडा काम ना लेट होवे, टाइम सिर हर एक चीज़ कर देण, उहदे लई हरमन नूं कॉल करना पैणा। इहनां तों वधिया किसने काम नहीं करना, वेरी प्रोफेशनल टीम। किसी ने भी मॉर्गेज करवाउणी है तां टीम हरमन बत्ता 6476859000। मैं खुद हरमन ने यूज किया, देयर टीम इज अमेजिंग। सो हरमन किवें हो?
1: थैंक यू नवी, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल नवी, साडा गोल ही यही हुंदा कि क्लाइंट नू वधिया एक्सपीरियंस मिले जदों साडे कोल मॉर्गेज कराउंदे ने। अज एक क्लाइंट दा फोन आया अपने लिसनर सी, मेरी 56 टू बी प्रिसाइज 56 मिनट्स उहनां दे नाल कॉल ते गल चली।
0: अच्छा।
1: एंड मैं थर्ड मॉर्गेज ब्रोकर सीगा जिन्हां ने उहनां नाल गल कीती। एंड वो ये कह रहे थे, कहिंदे कि जिन्नी कलैरिटी सानू अज मिली आ कि असीं किन्ने लई अप्रूव हो रहे हैं, किन्नी साडी मंथली इंस्टॉलमेंट बननी आ, किन्ने तक सानू घर देखना चाहिदा ते की साडी डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट होगी, वो कहिंदे उन्नी कलैरिटी नहीं मिली। मैं कहा जी चलो छड्डो, आपां पास्ट दी गल नहीं करनी, होर क्वेश्चन दसो। सो इन्नी के ज्यादा डिटेल च गल हुई साडी, 56 मिनट दी कॉल चली आ साडी, ते एट द एंड ऑफ द कॉल उन्हां दे सारे क्वेश्चंस आंसर सीगे।
0: हरमन हुण मैं ही लाइव एग्जाम्पल आया, मैं चलो बड़े मॉर्गेज एजेंट्स नाल डील कीता, सारे नूं मैं साफ दसदा, मैं हरमन तो फाइल करवाई ते यार सानूं पता नहीं लग्गिया कदों अप्रूवल होगी, हर एक चीज बड़े डिटेल नाल अपडेट्स मिलते रहे। सो यही तो गल्लां होंदियां जी हरमन।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਵੀ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੈਂਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਕੌਂਡੋ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਜਾਂ ਡੀਟੈਚਡ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪੈਰੇਬਲਸ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੇਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕੌਂਡੋ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਂਡੋ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ